पर सड़ जाएगा। ए भाई मैं पिंकी में हूँ कि वो एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।